एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो तीन चार बच्चे दोनों पे पी तो किन फील किन फो किन माशी का क्लेव जय हुआ एक तकट एक दो तकट एक दो तीन बच्चे दोनों पे पी तो किन फील किन फो एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो तीन चार तकट एक दो तीन चार पांच तकट धा एक दो तीन चार पांच तकट धा एक दो तीन चार पांच तकट उका को उका को ने तद देखे तद में देखे तम takete takete tadame takete tam tatatekete tadame takete ta otunga tatate tunga tatate dagadekete takatum tatate dagadekete takadagadakatunga ta tunga ta takatekete tondadekete takadadekete takadena takatatekete tum takatatekete tum takatatekete tum takatatekete tum.